0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 203 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 72 सीटों पर जीत दर्ज की। वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 105 सीटें जीत ली हैं। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। AIADMK ने 46 सीट जीते हैं। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। डीएमके ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और UDF सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई ने 19वें ओवर में 229 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लखनऊ ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Bharatiya Janata Party BJP has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance NDA government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress AINRC. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhavanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes.
2: Trinamool Congress Chief Mamata Banerjee has been defeated by BJP Shubhendu Adhikari by more than 15,000 votes in the Bhavanipur Assembly. Shubhendu Adhikari also won the Nandigram seat. This is regarded as a significant victory for the BJP, which is going to form the government in West Bengal. Kolnan Laha reporting from Kolkata.
1: BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress TMC in the first election after Special Intensive Revision SIR of electoral roll. With the win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 281 constituencies so far. BJP has bagged 203 seats, while Trinamool Congress has won 72 seats. Congress and Regional Aam Janata Unnayan Party AJUP secured 2 seats each. CPM clinched 1 seat. As per trends available so far for 12 seats, BJP is surging in 3, while Trinamool Congress is leading in 9. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its ally Assam Gana Parishad AGP has won 6 seats and Bodoland People's Front BPF has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats, All India United Democratic Front AIUDF clinched 2 seats, while Raijor Dal and TMC have secured 1 seat each. In Keralam, the Congress-led UDF has clinched a decisive win. While the Congress won 63 seats, its ally IUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. In Puducherry, the National Democratic Alliance is set to form the next government, securing a comfortable majority of 18 in the 30-member house. Actor-turned politician Vijay's led Tamaraga Vetri Karagam, TVK, is all set to create history in Tamil Nadu Assembly election by emerging as the single largest party. TVK has 106 seats and is leading on 1 seat out of 234 constituencies across the state. In an intense three-cornered battle in the state, 231 results have been declared, while trends are available from other 3 seats. According to the Election Commission, the ruling Dravida Munnetra Karagam, DMK, led by Chief Minister N.K. Stalin, has won 59 seats and is leading on 1 seat, while its rival All India Anna Dravida Munnetra Karagam, AIADMK, has won 47 seats. PMK has won 4 seats, Indian National Congress, INC, has won 5 seats, BJP, DMDK, and